ये लेकर आउट वो टाउट शख्स हो गया मैं आठ नीला उठ चाओ कहने अगर नवों में पिवाले पेनिक पटान सिलो ले गया मैं आप लोगों ने तमान की बल्लंग में अम्मा के चंग में अनिप संग ना तमालू तलु तुम सुलाओ मिगिट्सी तो सायक समिन